हमारे लिबास का एक फायदा तो यह होता है कि आदमी अपना सतर छुपाता है, और लिबास का दूसरा फायदा यह है कि लिबास से आदमी जीनत हासिल करता है। औरत मर्द के लिए लिबास, मर्द औरत के लिए लिबास, क्या मतलब है? मर्द को निकाह से जीनत हासिल होती है, औरत को निकाह से जीनत हासिल होती है, और जिन कौमों में निकाह का रिवाज नहीं वो इस जीनत से महरूम है। फिर लिबास अंदर के दाग धब्बे, बनावट की खामियां लिबास छुपा देता है, अंदर के ऐब छुपा देता है। मियां बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, कोई भी कमजोरियों से खाली नहीं, कोई भी कमजोरियों से खाली नहीं, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह बस, कोई भी कमजोरियों से खाली नहीं। कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के लिए लिबास है, वो उसके ऐबों पे पर्दा डाल देती है, ये उसके ऐबों पे पर्दा डाल देता है। बात सहेलियों में नहीं जाती, बात दोस्तों में नहीं जाती, बात गली महलों में नहीं जाती, बात बाजारों में नहीं जाती, बात चौराहों में नहीं जाती, बात अदालत के कटेहों में नहीं जाती। मुसलमानों का घर है, कभी वो सबर करती है ये शुक्र करता है, कभी ये सबर करता है वो शुक्र करती है, जिंदगी सबर शक्कर से गुजर जाती है। कभी वो सबर करती है ये शुक्र करता है, कभी ये सबर करता है वो शुक्र करती है, जिंदगी सबर शक्कर से गुजर जाती है। कमियों से कौन पाक है? एक बुजुर्ग थे, रंग के इतने साफ नहीं थे, मियां बीवी बैठे हुए तो कहने लगे तो जन्नती है। तो उनकी तबीयत पे कुछ बोझ था, कहने लगे जन्नती तो तू है कि तुझे हूर परी जैसी बीवी मिल गई, मेरी किस्मत खोटी कि तू जिंदगी में आ गया। कहने लगे नहीं, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, तू मुझे देखती है सबर करती है, मैं तुझे देखता हूं शुक्र करता हूं, सबर करने वाला भी जन्नती, शुक्र करने वाला जन्नती। शक्ल सबर से जिंदगी गुजरा करती थी, खामियों से कमियों से कोई भी मुबर्रा नहीं है। लिबास जो है अब तो कुछ ज्यादा ही रोशन ख्याली है ना, तन्हाइयों की तस्करी भी सहेलियों में, खलवतों की बातें भी दोस्तों में, बेशर्मी की इंतहा, शर्म हया का जनाजा निकल गया। जब बेहयाई के माहौल में ये पढ़ते हैं, सीखते हैं, रहते हैं, तो फिर ये चीजें ऐब नहीं रहती, फिर ये चीजें ऐब नहीं रहती। हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, लिबास है एक दूसरे के लिए, ऐबों को छुपाने वाले, कमजोरियों को छुपाने वाले, दूसरे के लिए जीनत का बाइस। फिर लिबास है, जब खाना खाने लगते हैं तो रुमाल दामन पे रख लेते हैं, आस्तीन ऊपर कर लेते हैं, बताया ये लिबास है। इसको गलत फहमियों से और बदगुमानियों के दाग धब्बे से हमेशा बचा के रखना, इस रिश्ते को बदगुमानी से, गलत फहमियों के दाग धब्बों से हमेशा बचा के रखना।